0: लोलु एफएम 101.2 मेगाहर्ट्ज उज्जवल भविष्य को लागि हाम्रो अभियान
1: सन्चे सोलु एफएम स्टुडियो टाइम
2: 6 PM
3: तथा ज्वालामय अफसेट प्रेस सोलु दुकुन्दा नगरपालिका 5 सोलु खुम्बु।

0: सांस्कृतिक तथा जातीय विविधता बीच एकता को आवाज
1: सुन एफएम 101.2 मेगाहर्ट्ज
0: सूचना शिक्षा र मनोरंजन को अपूर्व संगम
1: सुन एफएम 101.2 मेगाहर्ट्ज
2: उज्जवल भविष्य को लागि हाम्रो
3: डिजिटल कलर ल्याब तथा ज्वालामाई अफसेट प्रेस सोलु दुर्कुन्डा नगरपालिका 5 सोलु खुम्बु

0: उज्जवल एफएम 101.2 मेगाहर्ट्ज उज्जवल भविष्य को लागी हाम्रो अभियान
1: साउन्ड चेक सोनी एफएम स्टुडियो टाइम टाइम चेक को साथमा न्यू स्टार डिजिटल कलर ल्याब तथा ज्वालामाई अफसेट प्रेस सोनू दुत्कु नगरपालिका 5 सोलुखुम्बु

0: Sound check. Studio time. The studio time.
1: Snapping air. We have a good in Hollywood.
2: टाइम चेक को साथ में न्यू स्टार डिजिटल कलर लैब तथा ज्वालामाई ऑफसेट प्रेस सोलू दुकुम नगर पालिका पांच सोलू कुंभू

0: नेपाल में सर्वाधिक बिक्री हुई अंतर्राष्ट्रीय हुंडा ब्रांड को मोटर साइकिल तथा स्कूटर अब ओखलढुंगा को मिलन क्षेत्र
1: हुंडा का विशेषता
2: जापानीज उच्च प्रवृत्ति उत्पादित
1: उत्कृष्ट माइलेज
2: राम्रो रिसेल मूल्य
1: टिकाऊ र भर पर्दो
2: अफ रोड का लागि पनि उपयुक्त
1: BS6 तथा नया नया बरसम बजार में लंच भइरहेको
2: सब उमेर समूह कर्मचारी तथा व्यावसायिक प्रयोजन का लागि पनि अति उपयोगी
1: हाम्रा सेवाहरू
2: ओखलढुंगा र खोटाङको डिजिटल बजारबाट फाइनेंस को सुविधा सहित हुंडा का सब मॉडल का मोटरसाइकिल तथा स्कूटर कंपनी के मूल्य में पाइने
1: जुनसुकी मॉडल का जेन्युइन पार्ट्स पाइन का साथ ही सर्विसिंग सेवा
2: एक्सचेंज को सुविधा सहित मोटरसाइकिल तथा स्कूटर खरीद गर्दा एक सेट हेलमेट र सर्विस सेवा निःशुल्क दिइने
1: अनलाइन बाट बुकिंग गरी भुक्तानी गरेमा होम डेलिभरी को सुविधा समेत रहनेछ
2: ओखलढुंगा को लागि आधिकारिक विक्रेता होप मल्टीपर्पज सर्विस प्राली सिद्धिश्रम नगरपालिका 11 गोरुमारी भुजान ओखलढुंगा
1: संपर्क नंबर 037590222 9852880222 र 9842880300
3: कृपा क्षमा भैया पाठ्यो मधु समी वैश्वरी माथि।

0: ओल्ड एफएम 101.2 मेगाहर्ट्ज उज्जवल भविष्य को लागी हाम्रो अभियान
1: Soundcheck. Sony FM. Studio time. टाइम चेक को साथ में न्यू स्टार डिजिटल कलर लैब तथा ज्वालामय ऑफसेट प्रेस सोनू दूध को नगर पालिका 500

0: जान छोड़ू बना भी तो ज्यादा आउना साथी भाई खोजू
1: नेपाल सरकार विज्ञापन बोर्ड।

0: नेपाल में सर्वाधिक बिक्री हुई अंतर्राष्ट्रीय हुंडा ब्रांड को मोटरसाइकिल हो तथा स्कूटर अब ओखलढुंगा को मिलन सूचना
1: हुंडा का विशेषता
2: जापानीज ऊर्जा प्रणाली उत्पादित
1: उत्कृष्ट माइलेज
2: राम्रो रिसेल मूल्य
1: टिकाऊ र भद्भदो
2: अफरोड का लागि पनि उपयुक्त
1: BS6 तथा नया नया वर्षन बजार में लॉन्च भइरहेको
2: सबै उमेर समूह कर्मचारी तथा व्यावसायिक प्रयोजन का लागि पनि अति उपयोगी
1: हाम्रा सेवाहरू
2: ओखलढुंगा र खोटाङ को डिजिटल बजार बाटै फाइनेंस को सुविधा सहित हुंडा का सबै मॉडल का मोटरसाइकिल तथा स्कूटर कंपनी के मूल्य में पाइने
1: जुनसुकै मॉडल का जेन्युइन पार्ट्स का साथ ही सर्विसिंग सेवा
2: एक्सचेंज को सुविधा सहित मोटरसाइकिल तथा स्कूटर खरीद गर्दा एक सेट हेलमेट र सर्विस सेवा निशुल्क दिइने
1: अनलाइन बाट बुकिंग गरी भुक्तानी गरेमा होम डेलिभरी को सुविधा समेत रहनेछ
2: ओखलढुंगा को लागि आधिकारिक विक्रेता होप मल्टीपर्पज सर्विस प्राली सिद्धिश्रम नगरपालिका 11 गोरुमारी भुजान ओखलढुंगा
1: सम्पर्क नम्बर 0375902222 9852880022 र 9842803000

0: 신 인생에서 향수로 퍼지게 되었다이.
1: यूनी हिंसा बाटा बचाने वा बचाओ यंचनी हिंसा सामाजिक अपराध हो बालबालिका यंचनी हिंसा को दुखी महसूस करछन् हिंसा सुने कि असंतोष साथ है परिचित नाती बाद हो जैसे कि बाटा हम सक्ष अभिभावक ने अपना छोराछोरी को व्यवहार ख्याल रखो बालबालिका को चाल चलन पानी बेहोरा अस्वाभाविक परिवर्तन आने को हो सक्ष किसको पाइए उन्हींसंग तत्काल कुरा कराओ बालबालिका सुन नियमित संपाद होने कराओ आंतरिक मामला तथा कानून मंत्रालय उत्तर प्रदेश द्वारा जनहित

तेरे आंगन पर नींद है उसी अलियों ने जो खिंटाने भाई पारी पारी झाड़ी बूटियां घास रखी साझ पर्दा छोड़ी गाँव।

सफर करूं दान के तहारू के खाच पर तिमरू लाई भान के तहारू सबको लागि पाछि दिन्छु म त दुई चार लाख भन्ने राजा सवारी आशा साथ मेरा वरि पर दान के तहारू के खाच पर तिमरू लाई भान के तहारू सबको लागि पाछि दिन्छु म त दुई चार लाख भन्ने राजा सवारी आशा साथ जिन्दगी चल्दै त हैसम्मा अब सुन्देर उठेक पैसामा जिन्दगी चल्दै त हैसम्मा अब सुन्देर उठेक पैसामा छैन मनमा चोट सुकिलो छ चोट मेरो घरको पैसाको मोट सत्तामा कुर्सी हाल्दैछ म त पैसा

next to your heart. Solo FM 101.2 MHz. कार्यक्रम आफ्नै पाखा आफ्नै भाका को साथ में सागर इलेक्ट्रोनिक्स सेंटर तथा मोटरसाइकिल वर्कशॉप

0: सोलु एफएम 101.2 मेगाहर्ट्ज उज्जवल भविष्य को लागि हाम्रो अभियान
1: सोलु एफएम स्टुडियो टाइम
2: टाइम
0: चेक को साथ में न्यू स्टार डिजिटल कलर लैब तथा ज्वालामय ऑफसेट प्रेस सोलु दुतकुंडा नगर पालिका 5 सोलु खुम्बु।

0: समावेशी रेडियो समावेशी आवाज
1: सुनो एफएम 101.2 मेगाहर्ट्ज
2: So let's turn the presence.

साझ पर्दा घर छोड़ी गाँव घूम जानून बाघ भालू बैरा हाथी चितुआ पसे पछी रंजन को छेती हुन्छ चुपचाप बसे।